गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाउ। हर जन केवड़ भाग वडेरे, जन हर हर सरदार प्यास। हर हर नाम मिले त्रभ दास है, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिख्या लिखास। धन धन सत

पंजवां काहे रे मान चित मह उदम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मैं जंतो पाए तां का रिज का गह कर तरिया मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाउ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किस की तरिया सैर सैर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पौ करिया उडे उड़िया वैसै कोसा तिस पाछै बजरे शरिया तिन कवन खिलावै कवन चुगावै मन महे सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सुधान ठाकुर करतल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पार हवरिया।

जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़े हैं बहु स्मृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख परंपर करता जी तुद जीवड़ वरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरत जी तू आपे करह सोई।

जिन हर सेव्या दिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद वैन दूजा वरना कोए। तू कर कर वेख है जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आस्था महला पहला।

जन्म भया प्रणवतनानक धन की शरणा जन तो नाही विसरिया। आस्था महला पंजवा पई परापत मानुख देहुरिया गोब

केवल नाम सृंजा मिलाग भव जल तरण कह जन्म वृथा जात रंग माया कह रहो जप तप संयम धर्म न कमाया सेवा साधना ज

आई सवैया पाए गए जब ते तुमरे तब ते कहु आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने ओ। सिमरत

सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्दों तां गावो हरि के रामन जनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब किस है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया

साहब के समय सिख राज स्थापित हो गया सी। सिख राज स्थापित 57 साल सिखी का राज रहा। राजा शुभ नाम वह गुरु नानक का सिख सी। उन्हें अपने राज दरबार के उत्ते गुरु नानक का नाम लिखा दिता सी कि राज मेरा नहीं, यह राज गुरु नानक का है। वह पुत्र ब्रह्म पुत्र वह गुरु नानक की सिखी जुड़िया रहा। वह पोतरा वह गुरु नानक की सिखी जुड़े रहा। 3 पीढ़ियां गुरु नानक की सिखी जुड़े हुए वह राजिया ने गुरु नानक का राज हलीबी राज है जरा वह स्थापित कर दिता सी। अफसोस है अज उस संगला दीप की धरती से कोई गुरु नानक का नाम लैन वाला नहीं। पाली भाषा में अज भी दस्तावेज गुरु नानक साहब के मिलते हैं, दस्तावेज गुरु नानक साहब महाराज के, पर अज उत्थे कोई गुरु नानक का नाम लैन वाला नहीं। जिथे 57 साल गुरु नानक की विचारधारा का निशान साहब झूलिया, गुरु नानक की विचारधारा गर्जी, आओ आओ विचार मेरे नानक पातशाह हर एक दियां लोड़ां पूरियां करते हैं, हर एक दियां झोलियां भरते ने। बहुत लोग खुश हो गए गुरु नानक की विचारधारा ने, क्योंकि हर एक की लोड़ पूरी हो रही है। शरीरक लोड़ वास्ते राशन मिलता है, आत्मा की खुराक परमात्मा का नाम मिलता है। जब आत्मा की खुराक परमात्मा का नाम मिलता है, मन में शांति होती है, शरीरक लोड़ वास्ते भोजन मिलता है, शरीर तंदुरुस्त रहता है। सारे शहर के मेरे नानक पातशाह की जय जयकार होने लगी। पर कुछ गुरु नानक के दुखियों यह गल पाई ना, उन्होंने दौलत खां को शिकायत कर दी कि जिहड़ा तैं मोदी रखे ना, वो मोदी ने तेरा सारा मोदी खाना लटा देना। वो तो हर एक धरियां भर भर के दे रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं रखता। जो गुरु नानक साहब न दौलत खां ने आख्या भी कल नू मोदी खाना का हिसाब किताब किया जाना है। मुंशी जस राय की ड्यूटी लाई गई, मेरे नानक पातशाह ने मोदी खाने की नौकरी नू जवाब दे दिता, हिसाब किताब होया। 321 रुपये महिमा प्रकाश का लिखारी लिखता है कि मेरे नानक पातशाह दे वध गए। और मोदी खाने जिहड़ा गुरु नानक साहब के हिस्से का अलूफा पिया सी, अनाज भी वध गया। मेरे नानक पातशाह नू दौलत खाने बड़े अधीनगी नाल आख्या कि तुसीं मोदी खाने की जिम्मेवारी संभालो, पर मेरे नानक पातशाह ने आख्या जिथे मेहनत की बेकदरी है, मेहनत की बेकदरी उत्थे नानक नू कम करना बड़ा मुश्किल है। मेरे नानक पातशाह ने मोदी खाने की नौकरी छड़ दिती, अपने साथी मरदाने नू नाल लिया, किथे वेई दे किनारे पहुंच गए ने, वेई नदी के किनारे जिथी वेई नदी वग रही है, पानी का बहा है, बरसातों का मौसम है, ते मेरे नानक पातशाह ने वेई नदी विच टुब्बी मारी है। टुब्बी पानी का बहा तेज होने करके मेरे नानक पातशाह रोड़ के थोड़ा जा अगे लै गया है। मरदाने नू मेरे नानक पातशाह दिखे नहीं, मरदाना संसारी है, मरदाने ने रौला पा दिता कि नानक पातशाह डुब गए ने, डुब गए ने। भज्जा भज्जा है जिमें आके सारे शहर सुल्तानपुर के रौला पा दिता। दर्दवान लोग कट्ठे होए ने, कट्ठे होके जिमें भैन नानकी नू जाके कहिंदे ने, है भैन नानकी तेरा वीर डुब गया है वेई नदी दे विच। पर मैं एक बेनती करा, गुरु नानक साहब का सब तो पहला सिख जे होया तो वह भैन नानकी हुई है जिन्हें गुरु नानक साहब नू पछाणिया। भैन नानकी आखन लगी मेरा वीर डुबदा नहीं, मेरा वीर डुबियां नू उतारन वास्ते आया है, डुबण वास्ते नहीं आया, मेरा वीर डुबदियां नू उतारन वास्ते आया है। आओ वो सवाल जवाब सिख संगतां दी सेवा विच काव रचना विच इंज कहे जा रहे ने, प्रेम सत्कार नाल सरवण करो।

0: केवबोधी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.
3: Har jeth judan da lodiye, jis agge sab nivan, har sajjan da.

आमयाब गुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ दिखे दिख काही माया मोह परम तुले सुतदारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुने गुरु संगत तेह मलंत जम त्रास मटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखु शरणाई सो कहो टल गुर सेवी है सहनस सहज सुपाय दर्शन परसे हैं गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै शिव सुख संबंधी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरसाह दशाह जिस पास बैठे हाँ सोही है सबना दा वेसा सतनाम श्री वाहिगुरु जी जैत श्री महला पंजवा शांत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चित भवन दिन नीत खोल कपट गुरमेलिया नानक हर संग मीत दर्शन प्यासी दिन सरात चित भवन दिन नीत खोल कपट गुरमेलिया नानक हर संग मीत संत सुन यार हमारे सज्जन एक करूं बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हाँ

गावे तो न पौन पाणी बसंतर गावे राजा धर्म द्वारी गावे हैं चेत गुप्त लिख जान है लेख लिख धर्म विचारी गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारी गावे इंद्र दासन बैठे देवते आंदर नाले गावे सद समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारी गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे हैं मोहनिया मनमोहन सुरगा मश भयाले गावन रत्न उपाए तेरे आषण तीर्थ नाले गावे हैं जोध महाबल सूरा गावे खाणी चारे गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे धारे सही तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले और केते गावन से मैं चेतन आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पियो सी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर ओजन सी माया जिन वपाई कर कर वेख कीता प्रणाम जब तिस दी वड़ियाई जो तिस पावे सोई कर सी हुक्म न करना जाई सो पातशाह शाह पात साहेब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शरम पत जोली ध्यान की करें बेपूत खिंथा काल गुआरी काया जोगत उजंडा प्रतीत आई पंथी सकल जमाती मन जीत जग जीत आदेश स आदेश आद नील नाद नाहत जुग जुग एक होवे भुगत ज्ञान दया भंडारण कटकट बाज है नाद आप नाथ नाथी सब जा कीर दिस देवरा साध संजोग बजोग कर चलावे लेखे आवे भाग आदेश दिस आदेश आद नील नाद नाहत जुग जुग एक होवे स एका माई जुगत ब्याई तिंज ले प्रवाण एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवाण जब तस पावै तिवै चलावै जब होवै फुरमाण ओह वेखै ओ न नजर न आवै बहुता एह बडाण आदेश तस आदेश आद नील नाद नाहत जुग जुग एक होवे आसन लोए लोए भंडार जो किस पास एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की सच्ची कार आदेश तिस आदेश आद नील नाद नाहत जुग जुग एक होवे एक दूजी पौ लख हो है लख हो मैं लख वीस लख लगड़ा आखियां एक नाम जगदीश ए तरह पद पबड़ियां चढ़िया होया कीस सुन गला आकाश की गीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राजमाल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जोगती छुटै संसार जे साथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राति रुति थिति वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस बै धरती थाप रखी धर्मसाल तिस बै जी जोत के रंग दिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होई विचार सच्चा आप सच्चा दरबार दिथे सोन पंज प्रवाण लदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जप जाए धर्म खंड कहो धर्म ज्ञान खंड कहो कर्म केते पवन पाणी बैसंतर केते गान महेश केते ब्रह्म गाड़ घड़िया रूप रंग के वेश केतियां कर्म भूमि मेर केते केते धू उपदेश केते अंध चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देवदान मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते बात नरेंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड मैं ज्ञान प्रचंड जिथे नाद विनोद कोड़ आनंद शर्म खंड की बाणी रूप जिथे कार्द कड़िया बहुत अनूप तांकियां गल्ला कथिया न जाए जे को कह पिछे पिछदाए जिथे कड़िया सुरत मत मन बुद्ध जिथे कड़िया सुरस दान की शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर जिथे होर ना कोई होर जिथे जोत महाबल सूर तिन मह राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे दा के रूप न कथने जाहे ना ओह मरहे न ठगे जाहे जिनकै राम बसै मन माहे
ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੈ ਲੋ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸਚੈ ਮਨ ਸੋਈ ਸਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਕਰ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਦੰਤ ਨ ਅੰਤ ਤਿਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰੁ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰੁ ਵੇਖੈ ਵਿਖਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਬਹਾਰਾ ਧੀਰ ਜਸਨਿਆਰ ਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਪਾਉ ਖਲਾ ਗਣ ਤਪਤਾਉ ਪਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ ਕੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਦਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਚ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨ

ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹ ਨਰ ਭਰਨ ਜਾ ਤਿਰ ਪਾਤ ਨਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰੇਖ ਪੇਖ ਕਉ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤਨ ਪਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿ ਤੁਜ ਕਹਿ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਨਿਰਾਣ ਸਹ ਸਹਾਣ ਗਣ ਜੈ ਤਿਰ ਪਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਾਰਿਆ ਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਣ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸਮਤ ਭੁਜੰਗ ਭਰਿਆ ਦਿਸ਼ੰਦ ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਧਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਧਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੀ ਨਮਸਤੰਗ ਅਟਾਹੀ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਛੇਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਧੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਉਧਾਰੀ ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਰੀ ਨਮਸਤੰਗ ਸੋਈ ਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਪੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਤਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਗਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤਿਰਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਦਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਹੀ ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੀ ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸਯੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਮੇ ਨਮਾਤਾਸਤਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਜਬੇ ਨਮਸਤਾ ਸਜਬੇ ਅਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਾਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਭਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਾਸਤ ਦਿਆਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭਰਣੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਰਣੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬਧੰਦੇ ਨਮੋ ਅਸਤਾ ਬੰਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਾਸਤ ਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੋਖੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਜਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਜੂ ਹੈ ਪੂ ਹੈ ਲੇਖਾਂ ਪੇਖਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਮ ਅਦੇਆਂ ਪੇਆਂ ਜੀਤਾਂ ਪੀਤਾ ਤਰਮਾਨ ਨਦਾਨ ਤਿਰਵਰਗਾਂ ਸਰਗਰੇ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਜਾਦ ਹੈ ਜਨਮ ਹੈ ਵਰਣ ਹੈ ਭੂਤ ਹੈ ਭਰਨ ਹੈ ਗੰਜ ਹੈ ਪਾਂਝਾ ਚੂਝ ਹੈ ਚਾਂਝਾ ਮੀਘਾਂ ਰਫੀਕਾਂ ਦੰਦ ਹੈ ਬੰਦ ਹੈ ਨਿਰਬੂਝ ਹੈ ਸੂਝ ਹੈ ਕਾਲ ਹੈ ਜਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਜਹ ਅਨੰਤ ਮਹੰਤ ਅਲੀ ਕੈਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਦਰ ਲੰਬ ਹੈ ਸੰਭ ਹੈ ਅਗਮ ਹੈ ਜਮ ਹੈ ਭੂਤ ਹੈ ਸੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਸੂਖ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਪੀਤ ਹੈ ਬਹਾਇ ਗਹਿ ਮਾਨ ਨਿਦਾਨ ਅਨੇਕ ਹੈ ਪਰੇ ਕਹਿ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ ਸਮਾਤੀ ਨਦਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਪੇਖੀ ਅਪੇਵੇ ਨਮੋ ਕਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਉਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੀ ਨਿਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਤੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਮਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨ੍ਰਿਤ ਨ੍ਰਿਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਾਧੀ ਸਰੂਪੇ ਬਰਭੰਗੀ ਬ੍ਰਹਮਾਥੇ ਸਮਾਧੀ ਬਭੂਤੇ ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਈਸ਼ਵਰੰਗ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਯੋਗ ਯੋਗੇ ਈਸ਼ਵਰੰਗ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਈਸ਼ਵਰੰਗ ਪਰਮ ਬ੍ਰਦੇ ਨਮੋ ਸਹਸਤ੍ਰ ਪਾਣੇ ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰ ਮਾਣੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਅਪੇਖੀ ਪਰਮੀ ਅਭੋਗੀ ਭੁਗਤੇ ਨਮੋ ਯੋਗ ਯੋਗੇ ਈਸ਼ਵਰੰਗ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਅਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵੇ ਸੁ ਧਰਮੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਨਮੋ ਭੂ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੇ ਨਮੋ ਮਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ ਨਮੋ ਸੰਗ ਸ਼ਨਾਨੇ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰਗ ਨਮੋ ਯੰਤਰ ਯੰਤਰੰਗ ਨਮੋ ਇਸ਼ਟ ਇਸ਼ਟੇ ਨਮੋ ਤੰਤਰ ਤੰਤਰੰਗ ਸਦਾ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਰਵੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਅਨੂਪੇ ਰੂਪੇ ਸਮਾਤੁਲ ਨਿਵਾਸੀ
सदा सिद्ध दब सचदानंद सदन प्रणासी ग्रीमलगनंदा समाज तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा अभृद करता दुर्दर्दंगा गंगो घरता परम परम परमेश्वरं पुरुष पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अशेदिय बेदिय नामं कामं समस्तो ब्राजी समस्तास्त धामं ते राजो रुचा जरीशं जले हैं तले हैं पीता भे हैं प्रभु आजुआ दे सपे सह भुजंग प्रयात शंब अगा दे अबादे रंदी सरूपे नमो सर्व मान्य समाज तीन जाने नमाज तुम नरनाथे नमाज तुम परमाथे नमाज तुम अगंजे नमाज तुम अपंजे नमाज तुम काले नमाज तुम पाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो प्रमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जांत्रंग नमो सर्व दृष्टंग नमो सर्व कृष्टंग नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे बीजे समातंग परसिजे गर्भालंग स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धि निवासी जरपट छंद प्रसाद अमृत करमे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लग कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल छंद तक प्रसाद आदि रूप नाद मूर्त जोन पुरुख पार सर्वमान त्रमान देवा पेवा दुधार सर्व पालक सर्व कालको सर्व गोपन काल जत्र तत्र रवराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जा जा कर रूप जंग न रेख आदि पुरुख उदार मूर्त जो नाद शेख देश और न पेश जा कर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैले अनराग नाम काम विहीन पेख तु नाम हो न जाही सर्वमान सर्वत्र मान सर्वमान तथाहि एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक अखिल खिल अखिल खिल नयंत गोबर एक दे पेव न जानी जय बेद और कतेव रूप रंग न जात बात सुजानी कह जे बहुत आत्मात न जात जा करु जन्म मरण महीन जकर बकर बिर चतर जाक मानी प्रतीन लोक चौदह के बिखे जग जापी जय जाप आद दीवन आद मूर्त थाप्यु सब जय थाप परम रूप विनीत मूर्त पूर्ण पुरुष पार सर्व विश्व रचो स्वयं पव कर्ण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरुष देश धर्म ताम सो परम रहत भूतल खेस अंग राग न रंग जग जात पाद न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमी गानो सत एक पुरुष बतूत गर्भ गंज सर्व पंजन आदि रूप सूत अंगहीन अभंग नातम एक पुरुष पार सर्व लायक सर्व गायक सर्व गोप्रत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व दे अनपेख सर्व शास्त्र न जाने जय रूप रंगार रेख परम वीर प्राण जा कह नीत पाख नित कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवई बहु चित मद पार छंद तव प्रसाद गुण गण उधार महिमा पार आसन पंग उपमान अंग अनुपव प्रकाश निस्दिन अनाश राजन बाह शाह निशा राजन राज पान अनपान दीवान देव उपमा मान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालन काल अनभूत अंग अपाप अंग गतमित अपार गुण गण उधार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम आत दुत प्रचंड मित गद अखंड अलिश कर्म दृश धर्म सर्व प्रणाड्या आन दंड बाढ़ चाचरी छंद दव प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे पारे हरियंग करियंगे कामे पजंग प्रयाद छंद चतर जकर करता चतर जकर हरता चतर जकर दाने चतर जकर जाने चतर जकर वरती चतर जकर भरती चतर जकर पाले चतर जकर काले चतर जकर पासे चतर जकर वासे चतर जकर माने आए चतर जकर दाने आए जाचरी छंद ना सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय जन्मंग अजाय न चित्र न मित्र पर पवित्र प्रति सदृश दृश कृष भगवती छंद दव प्रसाद कथते
ਕਿਹਾ ਸਿਜ ਦੇਸਾ ਕਿਹਾ ਬਿਜ ਬੇਸਾ ਕਿਹਾ ਗੰਜ ਕਰਮੈ ਕਿਹਾ ਪੰਜ ਪਰਮੈ ਕਿਹਾ ਬਿਜ ਲੋਕਾ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤ ਸੋਕਾ ਕਿਹਾ ਬਦੂਤ ਵਰਣੈ ਕਿ ਬਭੂਤ ਕਰਨੈ ਕਿ ਰਾਜੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿ ਧਰਮੰ ਸੁਜਾਏ ਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਣੈ ਕਿ ਸਰਬਾ ਭਰਣੈ ਕਿ ਜਗਤ ਅੰਗ੍ਰਤੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਤਰੰਗ ਛਤਰੀਆਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਪਮ ਅਨੂਪ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਦੇਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪੇਵੈ ਕਿ ਚਿਤਰੰਗ ਮਹੀਨਾ ਕਿ ਕਹਿ ਦੀਨਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਰਜਾ ਕਰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਹਾਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਬਿਆਵੈ ਕਿ ਗੈਬਲ ਗੈਵੈ ਕਿ ਆਪ ਬੁਲ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਾਂ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੁਨਿੰਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੰ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰਗ ਕਲੀਆਂ ਕਿ ਸਰਬੰਗ ਦਲੀਆਂ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦਾਨੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਗਾਉਣੇ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪਾਉਣੇ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਬੇਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਸਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੀਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਲੀਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਜਾਹੋ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪਾਹੋ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪੇਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਹੰਤਾ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਗੰਤਾ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਕਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਸੁਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦਰਾਣੇ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਬੇਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨੇ ਆਏ ਸਦੈਵ ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਆਏ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਜਾਪੇ ਆਏ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਥਾਪੇ ਆਏ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਇੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਚੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰਗ ਕਲੀਮੈ ਕਿ ਬਰਮੰਗ ਫਹੀਮੈ ਕਿ ਆਗਲੋ ਲਾਮੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੈ ਕਿ ਉਸਨੋ ਵਜੂਆ ਤਮਾਮ ਰਜੂ ਹੈ ਹਮੇਸ ਸਲਾਮੈ ਸਲੀ ਖਤਮ ਦਾਮੈ ਗਨੀਮਲ ਸਗਸਤਾ ਗਰੀਬਲ ਪਰਸਤ ਹੈ ਬਲੰਦਲ ਮਕਾਨੈ ਜ਼ਮੀਨੋ ਜਮਾਨੈ ਤਮੀਜਲ ਤਮਾਮੈ ਰੁਜੂਵਲ ਨਦਾਨੈ ਹਰੀਫਲ ਅਜੀਮੈ ਰਜਾਇ ਕਿਜ ਕੀਨੈ ਅਨੇਕ ਉਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਭੇਦੈ ਭੰਗ ਹੈ ਅਜੀ ਜੋਨ ਵਾਜ ਹੈ ਗਨੀਮਲ ਖਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤਿਰਮੁਗਤ ਪ੍ਰਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਵਾਹੈ ਸੁਜੁਗਤ ਸੁਦਾ ਹੈ ਸਦੈਵ ਸਰੂਪ ਹੈ ਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਬਸਾਜ ਹੈ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਦੈਵ ਲੋਕਾਮ ਹੈ ਨਿਰਵਾਸ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗਾਜ ਅਨੂਪ ਹੈ ਓਅੰਕਾਰ ਰੂਪੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪੇ ਰੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਪੰਗੀ ਤ੍ਰਕਾਮੇ ਤ੍ਰਿਵਰਗੰ ਤ੍ਰਿਵਾਦੇ ਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ ਸੁਭੰਗ ਸਰਭਾਗੇ ਸੁਸਰਬਾਂਧ ਰਾਗੇ ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਜ ਸੂਦੈਕ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਥਿਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਨਿਰੁਗਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਸਦੈਵ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਜੋਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਨਿਰੁਗਤ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਗਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਅਨੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਜੋਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਜਾਚਰੀ ਸੰਗ ਅਪੰਗ ਹੈ ਨੰਗ ਹੈ ਬੇਗਾ ਲੇਖ ਹੈ ਬਰਮੈ ਕਰਮੈ ਨਾਦ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਬਹਿ ਪੂਤਾ ਪੂਤੈਨ ਸਹਿਦਾਸ ਦੰਦ ਬੰਧ ਹੈ ਅਭਗਤ ਹੈ ਵਿਰਗਤ ਹੈ ਨਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਿਜੰਤ ਸੁਨਿੰਤ ਹੈ ਅਲਿਖ ਦੇਖ ਹੈ ਵੇਖ ਹੈ ਪੀਖ ਹਟਾਹੈ ਗਾਹੈ ਸਾਂਭੈ ਗਮ ਹੈ ਨੀਲਾ ਨਾਦ ਹੈ ਨਿਤ ਸੁਨਿਤ ਜਾਤ ਜਾਦ ਹੈ ਚਰਪਟ ਛੰਦ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਬੰਗ ਹੰਤਾ ਸਰਬੰਗ ਗੰਤਾ ਸਰਬੰਗ ਖਿਆਤਾ ਸਰਬੰਗ ਗਿਆਤਾ ਸਰਬੰਗ ਹਰਤਾ ਸਰਬੰਗ ਕਰਤਾ ਸਰਬੰਗ ਪ੍ਰਾਣੰਗ ਸਰਬੰਗ ਤ੍ਰਾਣੰਗ ਸਰਬੰਗ ਕਰਮੰਗ ਸਰਬੰਗ ਧਰਮੰਗ ਸਰਬੰਗ ਜੁਗਤਾ ਸਰਬੰਗ ਮੁਕਤਾ ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਦਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ ਸਦੈ ਵੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਅਨੰਗੰਗ ਸਰੂਪੇ ਅਭੰਗੰਗ ਵਿਭੂਤੇ ਪਰਮਾਥੰਗ ਪਰਮਾਥੇ ਸਦਾ ਸਰਬਸਾਥੇ ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ ਨਿਰਵਾਦ ਵਿਭੂਤੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਸਰਭੰਗੀ ਅਨੂਪੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰੈ ਨਾ ਸਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਨਾ ਤਾਤੈ ਨਾ ਮਾਤੈ ਨਾ ਜਾਤੈ ਨਾ ਪਾਤੈ ਨਿਰਸਾਕੰ ਸ੍ਰੀ ਗਾਇ ਮਿਤੋ ਮੀ ਗਾਏ ਸਦੈਵ ਪ੍ਰਵਾਹੈ ਜੈ ਅਜਾਹੇ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੇ ਜਾਹਰ ਜੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਮਾਜ ਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰਗ ਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰਗ ਦਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨੇ ਆਏ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦਾਨੇ ਆਏ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਗਾਉਣੇ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪਾਉਣੇ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਬੇਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਕਿ ਜਾਹਰ ਹਜੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਹੈ ਮੇਸਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸੁਮਾ ਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰੀਮਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜਮਾਲ ਹੈ ਗਰੀਮਲ ਖਰਾਜ ਹੈ ਗਰੀਬਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਹਰੀਫੁਲ ਸਿਕਨ ਹੈ ਹਰਾਸਲ ਪਕਨ ਹੈ ਕਲੰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਸੁਮਾ ਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ ਰਜਾਏ ਕਰੀਮ ਹੈ ਸੁਮਾ ਤੁਲ ਜਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗਰਾਂ ਹੈ ਹੇ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤ ਬਹਿ ਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਲ ਗਵਨ ਹੈ ਮੇ ਸੁਦਰਵਨ ਹੈ ਤਮਾਮੁਲ ਤਮੀਜ ਹੈ ਸੁਮਾ ਤੁਲ ਜੀ ਜੈ ਪਾਰੰ ਪਰਮੇਸ਼ ਹੈ ਸੁਮਾ ਤੁਲ ਦੀਸਾ ਦੀਸਲ ਲੇਖ ਹੈ ਮੇ ਸੁਲ ਪੇਖ ਹੈ ਜਮੀਨੋ ਜਮਾ ਹੈ ਮੀ ਕੁਲ ਮਾ ਹੈ ਕਰੀਮਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਰੋ ਜਮਾਲ ਹੈ
कि अजलंग प्रकाश है कि मैं तो सुभाष है कि अजस्वरूप है कि मैं तो बभूत है कि मैं तो बसा है कि आत्म प्रभा है कि अजलंग नांग है कि मैं तो अपांग है मधुपार छंद तब प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम हर भर गंज हर नर पर पांज गण गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड भर नर अमंड अन पव्य नाश मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल धर्म धाम अंश जियांग आसन अपंग उपमा पार गे उदार जल थल अमांड दिस बिस अपांड जल थल महंत दिस बिस बेअंत अन पव्य नाश त्रैत तर तुराश आ जान बाह एक ओंकार आदु कथनीय नाद खलखंड ख्याल गुरभर अकाल कर कर प्रणाम जित चरण नाम अंश जिगात अजिजना बात आण टुट पंडार अण ठट अपार अठ धर्म अत टीठ कर्म अण प्रणनंत दाता महंत हर बोल मना छंद दग प्रसाद करुणा लिया करुणा लिया है अर कालिया है खलखंडन है मैं मंडन है जगदीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है त्रैत के धरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वं पर है सर्वेश्वर है जगदीश्वर है ब्रह्मंड है खलखंड है परते पर है करुणा कर है अजप अजप धप धप है अकृता कृत है मृत अमृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत धरणी धृत है अग्र धरणी धृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है मृत अमृत है अजबाकृत है मृत अमृत है निर्नायक है कल गायक है विश्वंपर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है बहुपंजन है अर्गंजन है रिप जाप रिप तापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा है सर्वात्म है आत्म वास है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो वृंद वृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग धाम संग शांत रूपे नमो परम ततंग ततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रे नादिंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो भंग भंगे भंगी स्वरूपे नंगीय नामे त्रिभंगी दृगाले नंगीय कामे एक शंभ अजय अलय पय वय पू अजुवनाश आकाश अगंज पांज रख पख काल लेख पेख अनाम काम गह डह नाथे परमाथे जो नी मोनी नराग नरंगे न रूपे न रेखे कर्मंग परमंग गंज लेखे भुजंग प्रयाद छंद नमास्तल प्रणामे समास्तल प्रणाशे अगंजल नामे समास्तल निवासे नृकामंग बभूते समास्तल स्वरूपे गो कर्मंग प्रणाशी सुधर्मंग बभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणाशी क्रीमल गुरिंदा समास्तल निवासी अजायब बभूते अजायब क्रीम हरियंग करियंग करीम हरिम चतर चक्र भरती चतर चक्र भुगते सुयम भव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणाशी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अभंगंग भूते चतर चक्र भरती चतर चक्र भुगते सुयम भव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणाशी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अभंगंग भूते सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी ओ तव प्रसाद सवैये एक ओंकार सतगुर प्रसाद तव प्रसाद सवैये पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सुधान के देख प्रयोग कर जोग जति के सूर सुरार्धन शुद्ध सुधा दे कर संत समूह अनेक मति के सारी देश को देख रहे हो मत कौन देखे प्राणपति के सरी भगवान की भाई कृपा हूं ते करति बने करति के माते मदंग जरियर संग अनुभ दंग सुरंग सवारी गोट दुरंग गुरंग से गुदत पौन के गौन को जात निवारी भारी भुजान के भू बली बेद न्यावत शीसना जात विचारी ते भय तो काम भय भूपत अंत गुना गई पाए पधारे
जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत टोल मृदंग नगारी गुंजत गुड़ गुजान के सुंदर हिंसत है हजराज हजारी भूत भवेख भगवान के भूपत कौन करे नहीं जात विचारी सरिपत सरी भगवान पजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारी तीर्थ नान दम दान सुसंजम ने मन एक वसेख वेद पुराण के देव पुराण जमीन जवान सुवान के बेख पवन हार यदि अवतार सब सुब चार हजार के देख है सरी भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है शुद्ध सुबह दुरंत दबाह सुसास ना दुर्जान द लेंगे बारी गुमान परे मन मैं कर पर विदवांखा ले ना लेंगे तोर हरीन वरोर मवासन माध्यम नंगन मान मलेंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर पार बटे बरियार विचारे सार की दार बिछैया दूर देश मलिंद मवासन माते जान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार उस बात नहीं जग चार लवैया साहिब श्री सब को सरनायक जाज गने सो एक दवैया दान देव नंदन साजर भूत भवैक भगवान जपेंगे जीव जते जल में सल में पल ही पल में सब साप जपेंगे पुन प्रतापन बाण जैत धन पापन के बहु पुंज खपेंगे साधु समूह प्रसन्न फिर जग सदर सवैब लोग जपेंगे मान वेंद्र चंद्र नातप जो अंतर लोग राज करेंगे कोट शनानक अधिक दान अनेक स्वयं बरसाज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सजी पद अंत फसे जम भाज भरेंगे जे नार सरी पद के परसें पाग दे नार फिर न दे तरेंगे कहाँ पयो जो दोलोचन मूंद का बैठे हो भक्त ध्यान लगायो न हाथ फिर लिये सात समुद्रन अलो गये ऊपर लो गवायो बास की उपख्यान सु बैठ गए ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो साज कहो सुन रहे हो सब जिन प्रेम की हो तिन प्रभायो काहू ले पान पूज तरे सिर काहू ले लिंग करे लटकायो काहू लख हर वाजी दिशा महे काहू पिछा को शीस नवायो को बतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो गुर करया उर जो सभी जाग श्री भगवान को भेद न पायो सतनाम श्री वाहिगुरु जी ओ पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती जाओ पई हमरी करो हाथ दर रचा पूर्ण होए जत की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो ब्रत बारा हमरे दोष्ट सब तुम कावहु आप हाथ दय मोह बचावहु सुखी बसै मोर परिवारा सेवक सिख सब करदारा मोर अच्छा रिज कर दय करे सब बैरन को आस करे पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम है शाड कोई अबर ना त्याहूं जो बर जाहो सुदम ते पाऊं सेवक सिख हमारे दारी है जन जन सत्र हमारे मारिय है आप हाथ दे मुझे उभर है मरण काल का द्रास निभर है हू जो सदा हमारे पछा सरी हस्त जु करो रक्षा राख लियो मेरा कनारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंध दुष्टन के हंता तुमहपुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बबधरा काल पाए शिव जीव अवधरा काल पाए एक विष्णु पर काशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब की वेदराज ब्रह्मा जू थी जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है दाहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन बजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझे हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सुवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सदरन को बल मोहबद कियो गड़ गड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी दे गूंचर असूला सबर कृपा दृढ़ कर फूला संतन दुख पाए दे दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना है गड़गड़ के बट बट की जाना है जब उद करख करा कर दार प्रजा दर्द दब दे अपार जब या करख कर दो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन दृढ़ सब तारे आप अपनी बूझो चारे तुम सब ही तेरा तंद्र आलम जानत भेद भेद यार आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद नील नाद संभ जा का मूढ़ चारत बेदा जा को पेब न पावत बेदा ता को गर्भाने अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का जीवन है पेब
आप अपनी बुद्ध जेती मरनत पहन पहन तो देती तुमरा लखन जाय पसारा के विद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राम कई भूपा अंडज जेरज सिद जगेनी उत्पज खान बहोर राज दीनी कहूं फूल राजा अब बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए जम पव आज गा स्वरूप सुयम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार या सिख संग्रो रोटी ते उठ बदुद भाता सकल मलेश करो रण खाता जे आस तुझ दब सरणी परे दिन के दोष्ट दुख धव मरे पुरख जवन भग परे त्यारे दिन के तुम संकट सब ठारे जो कल को एक बार त्याय है इंदा के काल निकट नहीं आए है रचा हुई दाय सब काला दुष्ट रष्ट उठर तद काला कृपा दृष्ट धन जहन हरे हो दागे दाव धन कम हरे हो रिद सद कर्म सब होई दोष शास सके न कोई एक बार जन तो मैं संभारा काल फास देता ही उबारा जैन नर नाम त्यारो कहा दारद दोष्ट दोग तेरा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लो उबारी सर्व ठार महो सहाई दोष दोग ते ले बचाई खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व ठार महो सहाई दोष दोख ते लिह बचाई राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहसे ती मनवजियां बधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गा बनाइया शब्द उतांगा वो हरि के रामान जनी बसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुवारना सब ना गल्ला समरथ स्वामी सो क्या मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं कर दे रहे करता दे रहे सब किस है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया अवाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहिब क्या नहीं कर दे रहे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुर बिटो जिस दियां ये बढ़ियाइयां कहे नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पांच शब्द जित कर सुभा गए शब्द वाजे कला जित कर धारिया पांच दूत तुद बस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जन कौ से नाम हर कह लागे कहे नानक तैं सुख होआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पैसर से पूरे गुरते जानी सुनते

जे चेतव्या सो मैं पाया नानक नाम त्याई सुख पाया सतनाम श्री वाहिगुरु जी जैत सरी महला पंजवां वार श्लोका नाल एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर सिमरंत संत सर्वत्र रमण नानक अगनासन जगदीश्वर पेखन सुनन सुनावन मन मह दृढ़िया साच पूर रहे सर्वत्र मैं

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम फ्लिप तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

0: श्लोक भी महले पहले के लिखे सुंदेश राज्य की सुनी। श्लोक महला पहला बिलहारी गुरु अपने दुहारी सदवा जनमान से देते किए सर्प ना लागी वार महला दूजा।
1: ये सौ चंदा उगवे सुर सड़े हजार इत चानण होंदे गुरबिन कोर अंदार महला पहला।
0: नानक गुरु ना चितनी मन अपने सुचे सुटे तलवार जो सुने अंदर के खेते अंदर छुपया तो नानक सोना हा फलिया बपड़े
1: तन में किसवा पड़े बिना सजन याद ही नहीं रचियो नाम।

सुदृष्टा जे क्रिया संग फलताओ साधक सासु तुसे करे पसाओ तू जानो इस से दिल से सिंध पवाओ हरे आसन जाओ हरे आसन।

0: सच्चे तेरे तरने सर्व विचार, सच्चा तेरा अमृत सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तुद आखे लख करोड़, सच्चे संतान सच्चे सब जोर, सच्ची तेरी सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, नानक सच चैन सच, जो मर जमे सो कच न कच, महला पहला।
1: वडी वड्याई जम जाना वडी रे जा सचनिया, वडी रे जाने कथा वडी रे जाने आला, वडी रे बुझे सपा वड्डी बड़ाई जा पुछना दा, तो वड्डी बड़ाई जा अपने यार, नानक कारना कसनी जाए, किता करना सर बुर जाए महला दू जाए।
0: ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, एक ना हुक्म कमाए ले एक ना हुक्म करे विनाश, एक ना पाने कट ले एक ना माया विच निवास, एवक है आजना जा पई जे किसी आने रा, नानक गुरमुख जानी है,
1: जग आप करे पर नाम की उपाय है, धर्म डाले चढ़ते ही सच निबड़े, गुण वास सड़े से जमालिया पाए, पूरे आ पाए, दो जित चाले

नानक जिन मन पहु तिना मन पहु कौड़ी नाम दरा संसार है कहीं नहीं है नरक न जाई है जियो कण साचे सा देखा जाए आ सवारी है जरूर चंदा पर सुनो।

बंदी वेखण कौ दीदार हिंदू सलाह इस्लाम दर्शन रूपे अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बैकार जोगी

0: दे मंगेशर का गुणा सुख करे संसार तोरा यारा ते कुड़ियारा खराबा बेकार एक होंदा खाए चलिया था उतना भेदाई कार जल सुजियां प्रिया लोहा कराया कार ओए जे आखै सो तू है जाने इतना भे तेरी सार नानक भगता भुख सलान सतनाम आगार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाशार महला पहला
1: मुसलमान की तेरा सिख मिहार कर पांडे किटा किया जल दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी त

0: हम क्या हम गया हम समय हम समूआ हम सुता हम चलया हम छटया हम गया हम प्यार प्यार हम पापन विचार हम सत्य सुतार हम छते हम त्रोवे हम भरिए हम सोवे हम विच जाति जिनसी सोवे हम विच मूर्ख हम जाना मूर्ख मुक्ति सार ना जाना हम विच माया हम छाया हम करक जंतु पाया हम दूजे तां दर सूजे ज्ञान में होना कत कत दूजे नानक हुक्मी लिखी है ले जिहा वेखै इहा वेख महला दूजा
1: हमें इहा जात है हमें कर्म कुमार हमें ए वंदना फिर त्रिजो नहीं पाए हमें चिपो उपजाय के संयम ए जाए हमें एहो हुक्म है तह कृत पे जाए हमें दीर्घ रोग है दारू पी इस माह

दीपालोला मंडला खंडा मेर पंडा अंड जेर जा खानी से जहां सो मिस जाने नानक सरा मेरा जता नानक जंतु पाए कै संभाले सुनना जिन करते करना किया चिंता थे करनी ताहा तो करता सुन करे जनो पाया जग इस जोहारी स्वस्थ इस दीवान अपग।

लाख तक ऊपर तीर्था सहज बेबा लाख सुर तुम संग्राम राम मैं सुत प्राण लख सुर तुझ लख ज्ञान ज्ञान पढ़िया पाठ पूरा जिन करते करना।

कर्म सचा निशान पौड़ सच जिन सचो सच वरताया सच कमाया पुण्य सच पाया जिनके हृदय सच बताया मूर्ख सच न जाने।

लोक महला पहला पड़ गड्डी लगी है पड़ भरी है सा पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ गड्डी है सा पढ़िए जीते बर्त बर्त पढ़िए जीते मार पढ़िए जीती आर जा।

पग उपेताने अपना किया सुमाना आल मल खाई से छाई पाई मूर्खन दे पट गवा विन ना वे किस्थाए ना पाई रहे बेबानी मरी मसानी अंदर जाने त्रिपतानी सदगुर बेटे सोच पाए हर का नाम मन बसाए नाम मदर करे सो पाए आसन देने के हम सब जलाए पौड़ी पर से मन पाऊंगे राजो मन की सुधाम दे लाल धर्मा बाबू राजो नवैन काम दे कमू नमू दे अनहुंदा राव कराए दे हम का दिखाने की जा थोड़ी उत्तम

पूर्ण राजा पूर्ण प्रजा पूर्ण सब संसार पूर्ण मंडप पूर्ण मारी पूर्ण बसरार पूर्ण सोना पूर्ण रूपा पूर्ण तनहार पूर्ण काया पूर्ण तपर पूर्ण रूप अपार पूर्ण मिया पूर्ण बीबी का पुरेकार पूर्ण पूरे ने हो लगा बिसरे आ सरकार किस नाल पूछे दोस्ती सब जग चलनहार पूर मिठा पूर मक्यो पूर दो बैतू नान सुरखाने

जब पाप राजा में सासुर हुआ सिख दाद सामने सब कुछ है दादा करे विचार अंधी रैयत ज्ञान हुई पाई।

के पौड़ी कर कर मजना को तुझ पाया पत्नी खसम से आए नगन लगे बस कुछ नहीं तो दरे की जग से पाया एक नन तुम्हें लिया के आपको तुझ पाया जग पद जाने

0: सुख दारू सुख रोग पया जहां सुख पावना होई तू करता करण में नहीं जो परिणाम बलहारी पुत्र तुलसिया तेरा अंत ना जाई लखिया राम जात में जो जोत में जाता अतुल कला भरपूर रहया सच्चा साहिब सिख वाले दिल की थी सुपार पया कहो ना ने करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहे आ माला दूजा
1: योग शब्दन ज्ञान शब्दन वेद शब्दन ब्रह्म खत्री शब्दन सूर शब्दन शूद्र शब्दन प्राकृत सर्व शब्दन एक शब्दन देखो जाने थे नानक का दास है सोई निरंजन जो महला दूजा
0: हे कृष्ण सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बासे विश्व जे को जाने वे नानक का दास है सोई निरंजन देव

अपर परे पायो अपार हृदय अंतर तारे ओ दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारे ओ सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुरु के प्रसाद सहज ते तीरंग माने नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरताए हो गुरु रामदास कल उतरे तैं

संतोष सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाश मिलत शांति उपजै धूर्त निरंतर नाशै सुख सागर पायो दिंत हर मदन होता संयम सत संतोष शील तनाव होता सतगुर परमान बिदन फिर जग जा सूर बजायो गुरु रामदास कलियो तेरा तै अब है अमर पर पायो गुरु रामदास कलियो तेरा तै अब है अमर पर पायो।

0: प्रेम भगत परवा प्रीत पुबली ना होता सतगुर शब्द अथा हमें तारा रस गुट मत माता संतोष पिता सर सहज समायो आयु ने समयो जगत गुर बचन तराय अब गत गोचर पर पर मन गुर शब्द वसायो गुरु रामदास कल उचर तै जगत उदारन पायो अब गत गोचर पर मन गुर शब्द वसायो गुरु रामदास कल उचर तै जगत उदारन पायो
1: जगत उदार नंदार भगत पवतारन अमृत बूंद हरना विष की बिखे निवारण सहज सरोवर भरे ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई तन से जन बड़ भागे ते मुक्ते पै सतगुरु शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचर ते शब्द निशान बुझायो गुर रामदास कल उचर शब्द निशान बुझायो
2: तेज सदा सहज श्यामा संतोष राय चो सदा शीर्ष नाह सो है गुर शब्द समाचरो नाम टेक संगाद बो है अजोनियो फल अमल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उचर तू सहज सरोवर वास

0: मानस नाम मिले मन मानिया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तनाश्री महला तीजा घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद एहो धन अखुट नान खुटै ना जाए पूरा सतगुर दिया दिखाए अपने सतगुर को सद बल जाई गुर कृपा ते हर मन वसाई।
1: Thank you.

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी के पते श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती स्मृत गुरु नानक नहीं त्याय सिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जन हर गोविंद नौ सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याया जय सदठा सब दुख जाय तेज बहादुर सिमरया करनो निध्यावताय सब ताई होय सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब ताई होय

दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु बोला जी पंजा प्यारिया चौहान साहेब जादिया चालना मुक्त त्यान हठिया जपना तपना जिना नाम जपिया बंड चकिया देग चलाए तेग वाही देख के आनंद तिना प्यारिया सचियारिया की कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोला जी जिन्ना सिंगा सिंगड़िया ने धर्म है तो शीस दिते बंद बंद कटाए खोपड़िया लोहाइया चरखड़िया चढ़े आरिया नाल चराए गुरुद्वारिया की सेवा लई कुर्बानियां कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखे केसा सुवासा नाल निभाए तिना दी कमाई का ध्यान करके खालसा दे बोलो दे वाहिगुरु बोला दे पंजा सखतां सर्वत गुरुद्वारिया का ध्यान करके बोलो दे वाहिगुरु बोलो दे प्रथम सर्वत खालसा जी की अरदास है जे सर्वत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चेता मन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेबान रियायत देव तेग फतह विरद की पैद पंथ की जीता तेरे साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो दे वाहिगुरु बोलो दे सिखा नो सिखी दान केस दान रहत दान बबेस दान साह दान प्रोसा दान दाना सर दान नाम दान श्री अमृत सर साहेब जी दे दर्शन स्नान चौकियां झंडे बुंग जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो दे वाहिगुरु बोलो दे सिखा दा मन नीवा माते के मत पात दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारिया गुरधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुल दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिया दे मान नेताणिया दे तान नेओटिया दी ओटा धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करने सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमियां वल्लों
कड़ा प्रसाद भेटा किया गया है। तिन्हां दी अरदास समह संगत अते कहलियां दी अरदास सतगुरु जी सर्वत साध संगत आपने दरो करो सिखी सदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद दी दे हाजर है दर परमा।

0: नानक मेर शरीर का एक रथ कृ स्वभाव जुग जुग फेर उठाइए कहनी बुझेता है सात जुगरा संतोष का धर्म गिर स्वाहो त्रेते रथ जते का जोर गिर स्वाहो द्वापर रथ तपे का सत गिर स्वा कल जुग रथ अगन का महला पहला
1: शाम सही कम्बर स्वामी पटना छठ रहे सबको छठना भरपूर राम नाम देवा महसूर नानक तो

मैं रंग किया। कल मैं भेद अथर्वण हुआ ना सदाई अलोभ है, नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुरानी अमल किया। सारे वे मुझते हुए चार परिगुण संचार विचार, आओ बल करनी सदाए सुनान तुम कंतर पाए पौड़ी सकल चुराया। इस मिलिया कसम सुना ले आज कारु दे जाने जर चने आले आसन जोड़ जुजर गए धूबे सेवन जारिया सब है बोलता।

0: राय रा अत दीर्घत मुझ कोई जे आवे आस पर जाहे रस कित फल फिके फुल भग बके काम ना आवे पत मिठत नीवी नानका गुण चंगे आई है तत सर को निवे आपको पर को निवे न सोए सर तराजी तो लिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूना निवे जो हंसा मिर गाए चीज लिवाए क्या किए जान बुद्ध जाए महला पहला
1: पर पुष्ट संध्या वादम सिल पूज बगल समाधान मुख चोट भूखन सारं कै पास हाल विचारा गल माला तकलाटन दो चोटी बस्तर कपाटन जे जानस ब्रह्मन कर्म तब ने चो कर्म कहो नानक ने चो चावे चंगा अपना मन भाव

0: सोच जत गंदी सवत एज ने उजिंका है ता पांडे तत ना है तुका ना मल लगे ना है जले ना जाए तान सुमान सुमान का जोगल चले पाए चौपड़ मुलाना बह चौके पाया सिखा तन चढ़ाइया दुर्बन थया ओ नुआ ओ कर पया वेत गा गया महला पहला
1: लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख दाल लख ठगियां पहना मियां रात दिन सजीना तग सबाहों कपे

0: नानक तग न तई जे तग हो मैं जोर मला पहला नाय मले पति जय सलाही सच तू
1: दरगाह अंदर पाई है
0: तगना तुरच पूत महला पहला
2: तगना इंद्री तगना नारी हल्के चुप पवे मुसदाड़ी तगना तरी तगना सी तगना जेवा तगना यकी पितगा या पे वक्त है वक्त आगे अवरा कत्ता

मत्थे टिकाते धोती कसाई हाथरी जंत पसताई नील वस्त्र पहर होवे प्रवान मले तान ले पूजे प्राण तपस्या का पिठा बकरा खाना चौकियों कुछ से न जाना देखे चौका कभी कार ऊपर आए बैठे कुड़िया मत पिटे वे मत पिटे ए अन्य साडा सिटे तन पिटा फिर करे इन मन झूठा चली परे कहो नानक सच ते आई है सच होवे का सच पाई पौड़ी चटे अंदर का

0: आप गुरायो सेवा करे तां सफाए मान, नानक जिसनु लगा तिस मिले, लगा सो त्रवाण महला दूजा,
1: जो जिए होए सो उगवे मो।

वस्तु अंदर वस्तु मावे दूजी होवे पास खैर सती हुक्म ना चले कहीं बने अरदास कुड़ कमाना है

पे भांडे फाजना पे पूरन दे एक ने दुध समाई एक चूल्हे रहन पड़े एक ने हाली पैसवन एक पर रहन खड़े।

0: तोर शोधित ने पाए नानके की बाहरी और दूजी नाही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए सुधो
1: वड़ा तेरा दरबार सच्चा सुध तख्त

और पुनः चरण कर तनय तरह हर को ना कोट पाप पर हर गुरु नाम जपो मन मेरे नाना पावो सुख मेरे सब श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जब तो सुखिया लाख करोड़ी बंधन पर हर का नाम जब तन स्तर अन कुमार रंग सिखन बजावे हर का नाम जब ते आगावे जे मार्ग है जात अकेला तहर नाम संगो सहेला ऐसा नाम सुहाते आइया नानक गुरु परमगत पाइया छोड़त नहीं कोड़ ला पाही नाम जब तय पार पराई अनक दरन जय आय संग हरे हर

मन हर के नाम की महिमा हो नानक नाम उदरे पति बहुमोच बहुत सियान जमका पौ ब्या प्यांक जतन का सुनना त्राप है एक अनेक अगन्य बुझे कोट पा दरगह ने सिजय छोट सुनाई उपया मो ब्या माया जा और कर तू सवे जम

काल अष्टपदी रमैया के गुण चेत पुराने कौन मोलते कौन दृष्टानी जितो सास सवार श्रृंगारिया गर्भ में दिन उबारिया बार दृष्टा तुझे प्यार है दूर पर जो बन भोजन सो सोच निरत प्या उपर साक्ष मुख प्या बैठ को दैन यह निर्गुण गुण कछु न बुझे बख्श ले तो नान सीजै जे प्रसाद हर ऊपर सुख वसें सुतवार निबंता संघस है जे प्रसाद पीहे शीतल जा सौदा ही पण पाव कमुला जे प्रसाद भोग सवर सा सब समारी सन सात बसा दीन हस्त पाव कर्म नेत्र रचना से त्याग और संरचना।

देहदान सलासला एक होलना नाक राखणारा पार रतनच्या तोडी संग्रच स्वासो चोड संमत जोशाना स्वासर कर्माने जो सो दुर्पराने छोड़ जाए तुका श्रम करा संग सहाय तत्पर।

अंतरग्रह वार्ता स्वागल पाथर का से तरया था जहाँ कह अंतर बस प्रवाह नानक तेज समाप्त सुन अंधा कैसे मार पावे कर गल है और निभावे कहाँ बाजार कबू जाए डोरा न कही तो समझा पोरा कहाँ कृष्ण पर गावे गुण जतन करे तो

छोड़ के लग आन सोए नानक कहूँ ना सी गई बिना पत जाए अश्परी। दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्तु धर्म खोट गुआवे एक पीना दे दस पीह ले तो बूढ़ा तो कहाँ करे जिस ठाकुर सुनाई तारा ताको की जय सुरनम शिकारा।

लाई मिथ्या तन तन कुटुंब सुवाया मिथ्या हमे ममता माया मिथ्या राजवंता मान मिथ्या कम को विकरार मिथ्या रातिया सुवस्त्रा मिथ्या रंग सम माया पे घसा मिथ्या तुम हो अभिमान मिथ्या आप सो प्रकट गुमान आश्र कल साथ की सरनान जप जप जी है हर के चंद मिथ्या सुन परिंदा सुने मिथ्या पर दो को हेरे मिथ्या नेत्र देखन पर तेर पाद मिथ्या सुने पूजन सुहाग मिथ्या तन पर विकार को तावे मिथ्या मन पर लोग लबावे मिथ्या तन नहीं पर विकारा मिथ्या बासले बेकारा जिन बुझे मिथ्या सप सब देह नान कहार हर नाम लै बिरथी सागत की आजा साधना कहो सूचा बिरथा ना बिना तना

पादस कर जे प्रसाते ससे दाके मन शनि पाठाद परता कर जे प्रसाते को न पहुंचे मस्ता सासुर प्रभुचे जे प्रसाद पाई तो लव देना न ताकि भक्त करे जे प्रसाद पुखन पैरी जय मत सुर क्यों आ सकी जय जे प्रसाद असवा सत्वारी मत प्रभु कहु न बिसारी जे प्रसाद आनंद सारा प्रो प्र अपने मना जे तेरी मन भंत बनाई उठ बैठ सत्य से आई जैसे चाहे जो एक अलख है यहाँ उहा नानू तेरी रख है जे प्रसाद करे पुन बहु दान मनाट कर कर उसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी सब को साथ साथ सितारी जे प्रसाद रस दरु तो प्रसुर सदानूप जे प्रसाद चन्नी की जा सो प्रसुर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानू जस कहे जे प्रसाद सुने करना जे प्रसाद ते खंड समात जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सो सहजे वसना जे प्रसाद हस्त कर चलें जे प्रसाद सो पूर्ण फलें जे प्रसाद परमंगल पावें जे प्रसाद सो सह समावें ऐसा तो त्याग रखत लागो गो प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तो प्रसो सात प्रभु मूल मनु विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त तक हो जाप जे प्रसाद ते कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावन सारे मन मेरे पिता सुरात जे प्रसाद सबकी गत होए नानक जब जपै जब सोए पाँच पाए जप सुना आओ गुआ सोहर गुण गाओ प्रभु कृपा से हो प्रकाश प्रभु दया से कौन विगास प्रसो प्रसन्न बस

की अचर्य कथा अस्परी साल का सम खुजल हो सात साल का सम जय अभिमान साल का सम पड़ते सो ज्ञान साल का सम जय प्रवनेरा सातन बेरा साल का सम पाय नाम रतन साल का संगे ऊपर जतन साल की महिमा वर्ण कौन प्राणी स्नान साल की शोभा प्रमा सुमानी साल का संग गोचर मिले साल का संग सदा पर फुल साल का संग आवे बस पंचा साल संग अमृत रस पंचा साल संग सब किए साल का संग मनोहर बहन साल का संग न कतु तावे साल संग सिर मन पावे साल का संग माया ते पे साल संग न पशु प्रसन्न साल संग कुछ मन सभी साधु का संग अपनी साल संग के सो नहीं बह साल का संग न बिंगा पै साल का सुनाई को मंदा साल समझाने परमानंदा साल का सुनाई होता साल का सुन पर सवाब आपे जाने साथ बढ़ाई ना न साथ तो बने आई साल का सुन कबू पावे साल का सुन सदा सुख पावे साथ संग बस सगो चल है साधु कैसा नजर सह साल का सुन बस है छान ऊंचा साधु कैसा महल पहुंचे साल का सुन लड़ा सतर्म साल का सुन केवल पार बन साल का सौ पाए नाम निदान साधु का कुर्बान साल का सौ सब कुल उदार है साल सौ साधन भी को चम निसार है साधु का सौ शोधन पावे जे संत सब को वरसावे साल सौ धर्मराय करे सेवा साल का सौ शोभा सुर देवा साधु का सौ पाप पलायन साल सौ अमृत गुण गायन साल का सौ सर्वथान गम नानक साल का सौ सब जनम साल का सन नहीं कश का दर्शन पेड़ तो उतने हार साल का सन कलोख तर साल का सन नर पर हर साल का सन आवा सोला साल सन विश्व कर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साल का सन अमृता जावे पार ब्रह्म सागर वसै नान कुदर साल सन रस साल का सन सुनो हर नाम साल सन हर के गुण गाओ साल का सन नमते विसर साल सन सपन सर साल का सन लगे प्रमिठा साधु का सन कर कर जीठा साल सन पर आज्ञाकारी साल संग कई हमारी साल का सन बटे सौरव नान साल कहते संजो साल की महिमा वेदना जाने जता सुन ते साल ख्या नहे साल की उम्मा ते गुण ते दूर साल जो मारे परपूर साल की शोभा का ना ही अंत साल की शोभा स्वाभ्यंत साल की शोभा उचे उचे साल की शोभा मूर्ते मूर्ति साल की शोभा साध

सत्संग गानिया बहुत आगत ब्रह्म गानी का मार परमानंद ब्रह्म गानी का कसवा अनंत ब्रह्म गानी सो सह नवासना ब्रह्म गान का नहीं विनाश ब्रह्म गानी ब्रह्म का बेटा ब्रह्म गानी एक संहिता ब्रह्म गानी का हो अचंत ब्रह्म गान का निर्मल मंत्र ब्रह्म गान निष्कर प्रभाव ब्रह्म गानी का बड़ प्रताप ब्रह्म गान का दस फुट पाकी पाई ब्रह्म गानी को बल बल जाइए ब्रह्म गानी को खोजे महेश नान ब्रह्म गानी आप परमेश्वर ब्रह्म गण की क्यों तना है ब्रह्म गण का सर मन माए ब्रह्म गण का कौन जाने पे ब्रह्म गण को सदा देश ब्रह्म गण का कथन जाया दाखर ब्रह्म गण सर्व का ठाकर ब्रह्म गण की मत कौन बखाने ब्रह्म गण की रथ ब्रह्म गण ही जाने ब्रह्म गण कांतना पार नान ब्रह्म गण को सदा नमस्कार ब्रह्म गण सब सिटका करता ब्रह्म गण सदी वह नहीं मरता ब्रह्म गण मौजूद।

निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार, नानक ओवा परस सगन सारे अष्टपति। मिथ्या नाही रसना पसमा में पेक नारंजन दस, पत्रा रोपना पेखे ने प्रसाद किता संत संगे। करना सुन कहूं कि निंदा सासे जाने आप सो मंदा, गुरु प्रसाद विख्या पर है मन की वासना मन से डर है। इंद्री जे पंच दोते रहना कोट मे को सा पर, बैसना सज सुपर सो प्रसन्न विष्णु की माँ त्यो पिन। कर्म करतो विन्य करो त्रिदासनों का निर्मल कर्म, कहूं फल की इच्छा नहीं बात है कि फल की संसंग्रा चय। मंत्र सुन गोपाल सो प्रो कृपाल, आप दृढ़ नाम दिपावे नानक वैष्णव परम भल पावे। प्रभति पवन पवकार सत्याग दुष्ट का सं, मंत्र विश सगला परम कर पूजा सल पारगम। सासन पापा मल खो वह सत भगवती की माँ तू तुम हो वह, पवन की डर करे न प्रीत मंत्राता विष्णु प्रीत। हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती पवन तो पावे। सो पंडित जो मन प्रभु दे राम नवा तुम सुद, राम नाम सारस सीवस पंडित कह दे जा जीव। हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे, वेद प्राण सुमृत हो जाए मो सुख में जाने असो। सवर्णा को दे उपदेश नान कुछ पंडित को सदा दे, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चवरना में जपे को नाम। जो जो जपे तुकी गतो ऐसा पावा जन कोय, कर कृपा अंतर।

आपे कणका मुंहिंजो प्रताप सोई फन हो पसरियो आपो अंतरंग लखण जाए पारगम फेरण जैसी माते तैसा प्रगाश पारगम करता विनाश सदा साक्षात दया सिमर सिमर नानक पै निहाल चलो उसत करे अनेक जन अंत न पारा बार नानक रचना प्रवृति बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी के कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बंध भ्रम उदासी कई कोट देव के श्रोते कई कोट तपिस्त्र होते हैं कई कोट आत्म ध्यान सार है कई कोट गव का विचार है कई कोट न सनाम त्याव है नानक करते काम सना पाव है कई कोट साहेब मानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभ्यगात अनिकोर कई कोट पर दल को है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया शर्मा है कई कोट प्रदेश प्रमाए जिद लाओ तितर नान करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रथ होगी कई कोट पंखी सर्पो पाए कई कोट पात्र दृख निप जाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सुर नखत्र कई कोट देवता इंद्र सक्षतर सब समोरी अपने सुतारे नान जजे पावे तेते निस्तार कई कोट राजे साम साते कई कोट वेद का सुंदरता सास कई कोट कीर्तन समुद्र कई कोट नाना प्रकार जन कई कोट किए चल जीवे कई कोट भी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जाकर प्रसाद कई कोट पोत्रे सुख मृगात सब ते मेरा सो ते तू नान का परिपुत्र या परपुर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरसुर्ग निवासी कई कोट जन्म है जीव है मर है कई कोट बहुत जोनी फिर है कई कोट बैठ से खाए कई कोट कहले थल पाए कई कोट किए धनवंत कई कोट माया में चिन्ह जय जय पाना तय तय राखे नाना सबके प्रभ कह हाथे कई कोट पह बैरागी राम नाम संचन लेवलागी कई कोट प्रभु खो जनते आत्म पार्वम लहंते कई कोट दर्शन प्रत्या आत्म को मिलियो प्रभ अवनाश कई कोट मांग है सत्संग कई पार बंचन लागा रंग जिनको होया सो प्रसन्न नानक ते जन सदा तन धन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश भ्रमण कई कोट होया तार कई जल की मोम विस्तार कई बार पसरियो पसार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट कीने बहुपान सब के प्रमा सुमात ताका अंत न जाने कोई आपे आ नानक प्रसोय कई कोट पार्वन के दातन होता संप्रदास कई कोट तत्के बेटे सा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम रस्ती वह अमर पैसा सभी जीव है कई कोट नाम गुण गावे आत्मरसो सह सुमावे।

फर्स्ट बड़ी जिसका अंतरा जवान सोन पापी हो स्वान जो जाने में जो बनवन सो हो त्रिचा का जन आपको करवंत कहावे जन मारे बाजा फरमावे तन पुंका जो करे गुमा सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी वसावे नान किया मोता गै सो पावे तनवंता होए कर गरबावे तन स्वान का संग न जावे बौलश कर मान खूब पर करे आस पर पितरता का होए विनाश सौते आव जाने बलवंत खेण में होए जाए पसुमन इसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जा का मिटे अवमान सो जानान भर गए परवान कोर कर्म करे हम तारे सम पाए सले बिरछारे।

बिना संतो नहीं को राजा सोनम रो वृक्ष सब काजे नाम राम सर्व सुख होय वड भागी किसे प्राप्त होय कर्म करावने आपे आओ स्वासो नानक हर जा करण करावन करने हार से आप कहाँ विचार जैसी दृढ़ करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो उसकी नो सो अपने रसों से दूर सब हूँ कह संग बुझे देख करे विवेक आपे एक आपे अनेक मरे न बिन सया वे न जाए न सभी रह समाए।

अष्टपदी। संत का दुखन आर जा कटा, संत का दुखन हम ते नहीं छूटा। संत का दुखन सब सब जाए, संत का दुखन नरक में पाए। संत का दुखन मत तोय मलिन, संत का दुखन सो बाते हीन। संत के अते को रखे ना कोय, संत का दुखन तान पर सोय। संत कृपा कृपा जे करे नान, संत निंद पी तर। संत का दुखन ते मो पावे, संतन का दुखन काल जोन लवे। संतन का दुखन सर्व जोन पावे, संत का दुखन त्रिगत जोन कमाए। संतन का दुखन तृष्णा में जलाए, संत का दुखन सब को चलाए। संत का दुखन ते सब जाए, संत का दुखन नीच न जाए। संत दुखी कथाओं को नाए, नान संत पाए पावे प्रगत पाए। संत का नंद महत पाई, संत का नंद कंठक न पाई। संत का नंद महाते आरा, संत का नंद परमेश्वर मारा। संत का नंद राय ते ही न, संत का नंद दुखिया यार दीन।

का दुखी जगह रूप हो जाए, संत के दुखी को धर गए मैं सजाए, संत का दुखी सलाह सह करिए, संत का दुखी न हमारे न जीवाई है, संत के दुखी की पूजा ना सासू का दुखी उठ चले निराशा, संत के दो न तुष्ट कोई जैसा पावे तैसा कोई हो, पया कृष्ण में चाह कोई ना न जाने सच्चा सोए, साकर सत्य हो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, सब क्यों सुन करो दिन रात से आओ सा गिरा।

ब्रह्मास्पति अवनाशी ब्रह्मन मैरात्मन की तुम प्रीतिया जैसे परिनाही किस कोय सर नरंतर को सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गिरी सुजाना पार्वन परमेश्वर को बिन कृपा नाम दयाल बसंद सत्य की चरण पाओ नानक मन अनुराग।

मन मेरे चल की उठले मन सनाता तिन जांदे जिन अपना प्रभु पछाता सो जन सब तो का दाता जिसकी सरसर सो पावत कदर सपा मिटावे और से

आनंद पया दुख नाथे पाई, जन्म मरण के मिट जाते थे साधु के पूर्ण उद्देश्य, तो चुका निरपा हो बसे सरदामन से कहन से, जिसका सातन कृपा तारी सासु जपना मुरारी, चित पाई चुके पंगम सुनान का राजा सरवन निर्गुण आसन।

विनाशन। जब पूर्ण करता तो सोए सदम की सास कहो के सोए। जब अवगित गोत्र पवे काता चित्र गुर के पूछ लेखा। जब नाथ नजना गोत्र गादे तो पहुँचते कौन बंधन वादे। आपन आप आपी चल जाना के आपन रूप आपी हो प्रजा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तब महल कहो क्या होता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कौमान कौन अभिमान। जय श्रू के वो जदि तौ छद सद लग कौ की सर। जय श्रू के वो जदि तय सर सद लग कौ की। जय

दोसो मान अपमान प्रकार की अवख्या अपन खेला कर देखा के संकोच नान कर जय अवगत आओ जप से पसा संप्रताप दो पाका पे तनियों की शोभा बनी आपे कौते कह चोरा पे रखो गुण जो

माया सबसे मत तृप्त रहे दुष्कर तो अपेक्षा आज्ञा आवे आज्ञा जाए नान जा पावे तले समाए इस वैसो नाही बुरा उरे कौखने कस करा आपला कर तू तो नहीं किया फे जाने अपने जी की आसौ तारी सौ छोटा पसराज ताकि गत में कहीं ना जाए दुष्ट हो तसो जी पाए तिरका की ऐसा प्रवान गुर प्रसो नान के जान जो जाने ते सासो को या मिला ले प्रसोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जिन मोज सृदय पवन तन

उत्तम श्लोका के बचाओ निकला ले रतन शुद्ध कुमार तो तुझारा सरल सब दिवसोता का संग जाकर मन लगा जय जय शब्द अनाहत वाजय सुन सोन करे तो गजय और

प्रकृष्ट करो संतमित सावधान का गुरजी सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सोत निदान सर्व क्षमता की पूर्ण होए प्रदान कर पर सल होए सबसे उच पाए स्थान बौर न हो गए अमन जान हर संखार चले जन सोए नानंद से प्राप्त होए केम सा

समय हो गया, इसी विचार कल आरंभ करेंगे। हजूर दसम पातशाह अपने शरण दे आदर्श की व्याख्या करेंगे। समय की उल्लंघना ना करिए, क्योंकि सिख सारी जिंदगी सिखदा रहिंदा है। इसलिए समय की उल्लंघना ना करदे हैं, क्योंकि जो सिंह का ख्याल होंगे भावे कल कुछ समागम के संबंध में बेनतियां करदे हैं, वक्त लगा सी तो मैंने मेरे बुजुर्ग पार महान विद्वान यानी हरनाम सिंह जी चाचर जी ने सलाह दी थी, मैं उन्हों का हुक्म संतों वालों जो है वो प्रवान करना। इसलिए समय की उल्लंघना ना करदे हैं, अज का विचार इसे समाप्त करते हैं। कल इस विचार तो फिर आरंभ करांगे। आप जी ने भुलना चुकों की सेवा बख्शिश करनी, संतों वालों जन सेवा कथा विचार संबंधित आई है। सच्चे पातशाह सरबादी चालना

उपमा महान देश समृत साहित तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी भी पवित्र हजूरी विखे शिशु बच्चों के आप जी ने पार ब्रह्म गुरु परमेश्वर तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पुत्र अमृत बाणी जो सतगुर के सिखन सुख करनी पाठक हृदय विकार हरनी

आप चले तो बनो मंगते, मंगता बनना कदे सौखा थे। मेरे साहेब गुरुपंच तुम पातशाह मंगते बने ते की मंगया आने बच्ची ने शब्द पढ़िया सी, हम पीखक पिखारी तेरे तू निज पत है दाता, हो दयाल नाम दियो मंगत जन को, और कुछ नहीं मंगता, नाम दी झोली भर दे सच्चे पातशाह।

मन जीवे प्रभ नाम चितेर। ये सच्चे पातशाह फिर कोई ऐसा मंत्र दियो जिद नाल मैं जीवदा रहा। अगली पंक्ति पढ़ो, गुरु कोल केड़ा मंत्र है? अज ते कई थावां ते जाईदा ना, तो कन्ना विच दादे भाई तेरे कान च दसना मंत्र। मेरे गुरु ने एक मंत्र लको के नहीं दिता, मेरे साहिब गुरु पातशाह ने कहा आ तेनू मंत्र दिया और सारे सामने दिता है, तो कि मंत्र दिता है?

कितना अंतर है तेरे शायद कलगी दर पातशाह ते अज दे महापुरख दा। अज दे बड़े बड़े डेरे वेख लो, महापुरख वेख लो, कहिंदे असीं गुरु हां, आओ तुहानूं असीं बख्शावांगे। पर मेरे साहिब गुरु कलगी दर पातशाह सब कुछ हुंदिया होया कि कहिंदे सत्ते पातशाह मैं तेरा दास हां, मैं गुरु नहीं हां, मैं सिखां दा चेला हां।

है। हाँ मैं बेनती कर रहा था, पात्र विच रह गए। साहिब गुरु पंचम पातशाह जो अकाल चलाना कर गए तो साहिब गुरु छेवें पातशाह ने पाठ सिखाया, 29 दिन बाद भोग पिया, इतिहास गवाह है। जो भोग पिया तो साहिब गुरु छेवें पातशाह ने बाबा बुढ़ा जी ने पहला पाठ किया। बाबा बुढ़ा जी जो पाठ किया ना तो साहिब गुरु पातशाह ने खजांची नूं कह के दो माया दियां थैलियां बस्तर बहुत भी दिता। बाबा बुढ़ा जी कहन लगे, सच्चे पातशाह एक ही पाठ की भेटा दे रहे हो? आख्या नहीं, पाठ की भेटा नहीं दे रहा, मैं कौन हां पाठ की भेटा देने वाला? बाबा जी ये तो तुहाडा सत्कार है जिहड़ी तुसीं गुरु की बाणी मैनूं पढ़ के सुनाई, सत्कार है, बाणी की भेटा नहीं है। तो साधु संगत आओ, साहिब गुरु पंचम पातशाह के बचन पढ़िए।

सुख पाई। आस्था की दीवार दे बचन पढ़ने आना कि कई बार देखी दे असि कहने अपने आप नूं सेवक आखने असि गुरु घर दे सेवक हां अनन सेवक पर नाल की है होमे ते मेरे धन गुरु नानक पातशाह ते गुरु अंगद देव पातशाह दे श्लोक पढ़ो कि सेवक दे लक्षण की हुंदे ने सेवक किनू

रचना इस बाणी का नाम शुरुआत ही जप है। गुरु जप ही तो समझा रहे हैं, इसके सानू पता लग जाए जप बहुत बड़ा भुलेखा मुगलता दूर हो जाएगा। ताकि सारी जिंदगी असी दो चार अक्षर के एक नाम को रिपीट करने का नाम ही जप ना समझे, इस तो अगे भी बढ़े। हम गुरु को पूछो जी किनू जपा तो किवें जपा, किनू जपा तो किवें जपा। सारा जप साहिब जेड़ा है ना तो यह गल समझा है किनू जपना तो किवें जपना, उनकी की निशानियां ने जपन दी की निशानियां, किनू जपना है उनका जवाब

नानक होती भी सत। जेड़ा रोज रोज बदल जाए, जेड़ा कभी जम पवे कभी मर जाए, जेड़ा एक बार खत्म हो जाए मुड़ उन्दे वर्गा कोई होर ढूंढ ना पवे, उन्हूं ने जपना। जप जेड़ा आद विच भी सच है जदों अजे कुछ नहीं सी, जुगा जुगांतरां बीते समय के जुगा जुगांतरां तो सच है उन्हूं बदलन की लोड़ नहीं पई। राजो तां तेरा सदा नेचर एक कते न युवा युवांतर भी सच है। हुण प्रेजेंट विच वर्तमान विच भी मौजूद है, अज का समा भी उनके तो खाली नहीं। जे खाली हाँ तो असी उनके तो खाली हो जाने जदों जुड़ते ने, जदों उन्हें पछाणते ने, जदों साड़ी पछाण तो बाद हो जाता है, गुआच जाता है साड़िया निगाह पिछे, वो अज भी है। नानक वो सीधी सच ते कभी भी निराश ना होई कि कभी कुछ समा ऐसा आएगा जदों रब नहीं रहेगा, जदों परमात्मा नहीं रहेगा। इसलिए जिहड़ा हमेशा रहिंदा ते हर छावे रहिंदा, क्यों ना उनका जप उनके नाल जुड़िया जाए। बल्कि गुरु ने इसे भी आखिया

क्या जिन मन वस्या सो मन की सोच शरीर की सफाई लेकिन कर्म कांड विच पए हुए धर्मी मनुख ने यह सोच लिया शरीर नु सच्चा रखना बल्कि एहो कारण जे साडी दुनिया विच भी अज कर्म कांड ब्राह्मणवाद इन्ना प्रवेश कर गया कि असी तुकां दे अर्थ ही बदल लिया असी नहीं आखिया सोच होवे तां सच पाईए सानू इहदे टुटिया ते असी हाथ धोण नू चार चार वार टूटियां धोण नू दस दस बार ता पानी पी लैन टूटियां नू पहला मांजो उहनू सुच दा केंद्र बना लिया आखिया ई सुच शरीर कर हुण गुरु आखदा शरीर सुच नहीं शरीर सफाई है शरीर सफाई है ते असी सुख पड़ दित्ती सुच होवे तां सच पाईए बल्कि उधर जोड़ने तां कहिंदे सुच होवे तां सच पाईए जे सच मिल जाए तां सुच हुंदी है हथ धोतिया पैर धोतिया सुच नहीं हुंदी है तां पिंडे दी सफाई है गुरु ने जप दे पहले कर्म कांड नूं पहले कर्म नूं बड़ा स्पष्ट कर दिता कहन लगे।

पिंडा धोल है मन ने पवित्र नहीं होना, मन ने पवित्र नहीं। इस देह नूं धोण नाल, इस पिंडे नूं शरीर नूं धोण नाल मन पवित्र नहीं होता। गुरु ने बाणी चक दिता, जल के मज्जन जे गत होवे नित नित मेंढक ना होवे। इहदा मतलब यह भी ना समझियो कि नाना गुना है जां सिख नूं नहाण लई हुक्म नहीं जां पानी नाल कोई संबंध नहीं। हां जरूर संबंध है, लेकिन सफाई दा, सिख नूं तन करके भी ते मन करके भी गुरु तंदुरुस्त देखना चाहता है। इसलिए आखिर सरकार इश्नान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा। लेकिन दुआ की अरोगता आपस में मिक्स करके कंफ्यूज ना हो, कि मत यह समझ लवे कि तन की अरोगता का काम मन की अरोगता भी कर सकता है। आप लिखा दूर करना है, तन की अरोगता अपनी थावे है, मन की अरोगता अपनी थावे। तन के आरोग करने के साधन अपने ने, मन के आरोग करने के साधन अपने ने। इसलिए कहने लगे भलिया जिहड़ी सफाई सी तू उन्हू सोच बना बैठा, सोच बना बैठा। कहने लगे

मन किवें सुच्चा हुंदा। पिछले लाइन दे नाल ही इक लाइन है, कहन लगे जूठे जूठा मुख वसे। श्री अक्षय जी वाले लाए सर, जो जोरू सिरनावनी आवे वारो वार, जूठे जूठा मुख वसा नित नित हो खुआ। जेडी झूठ है वह है झूठ, ते झूठ तेरे मुंह विच रहिंदा, असल तां तू झूठ अपने मुंह विच लई बैठा है। झूठ छड, पवित्रता आवे। जिनी देर तेरे मुंह विच झूठ है उन्नी देर समझी तेरा मुंह झूठा है। झूठ तां तू मुंह विच लई बैठा, ते तू कहिंदा मैं पवित्र हो गया, तू होके पिंडा तो हुण झूठ ने झूठ बनना, सच ने सुच बनना। फर्क ते नहीं है ना, झूठ ने झूठ बनना, झूठ ने झूठ बनना, ते सच ने सुच बनना। मन कर गुरु एक ख्याल देंगे ने इत अगली लाइन विच, जेड़े लोग फिर भुलिया छोटी छोटी गल नूं चंगी तरह गुरु नूं समझाना पैंदा, नहीं तां मैनू कन्फ्यूज हो जाऊ। कहन लगा जी जे झूठ बोलना ही झूठ है ते सुच नहीं हो नहीं सकती। ते कहन लगा मैं ते बोलना ही छड़ देना, मौन धारण कर लेना, चुप हो जाना। जे चुप ही रहांगा ते झूठ किवें बोलिया जाए। अगली लाइन, झूठ बोलन नाल झूठा हुंदा, ते मैं रिस्क क्यों लवां क्यों ना बोलना ही छड़ दे, चुप ही कर लां, ना बोलांगा ना झूठ जबान ते आवेगा। मेरे कहन लगे ए भी नहीं, चुप है चुप ना हो वही, कोई जरूरी नहीं कि तू जबान तो बोले तद ही बोलिया जाए, अंदर तो तेरे रौला पिया होया। कई बार देख लिये मनुख चुप रहे, इकला बैठा हुए बोलता नहीं, बिल्कुल इकला बैठा हुए इसे कमरे में। जब तुम इकले सफर कर रहे हो बोलते सकते नहीं, जिन्हें ना बोलोगे मुंह की तो लोड़ ही कोई, पर कभी गहराई ना देखे हो अनेक तरह की गल्ला तुम अंदर अंदर करी जाते, जवाब भी करी जाते, सवाल भी करी जाते। जो इकले भी बैठे होंगे ना, अनेक तरह के अंदर सवाल भी चल रहे हैं, जवाब भी चल रहे हैं, झूठ भी चल रहे हैं। इकला बैठा सोच ही जाता है जे मैं आ कतल किया, जे मैं अदालत में आ वकील ने पूछा मैं आ झूठ बोल के जवाब देंगा, योजी बनकर बनाव, वह सारे झूठ अंदर बोली जाता है, जबानों नहीं बोल रहा। अनेक बार देख लो असं पक्षा पकाने अंदर ही पकाने हैं ना, पहला फैसले करने हैं, फलाना आ आखेगा मैं आ जवाब देंगा, वह जरा आख रहा हों भी मनुख अंदर अंदर सुन रहा हों, जरा इन्हें जवाब देना हों भी अंदर अंदर दे रहे, गलबात चल रही, तू कहना मैं चुप हाँ। गुरु कह लगे भलिया देखी कितने जबान की चुप न चुप नहीं हो जाती, हाथ की सोच न सोच नहीं हो जाती, मैं तेन यह रोकना चाहता।

बिलावल महला पंजवा पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता अंदले तरे पवन सूजया गोर भेट पुनीता पिंगल पर्वत पार परे खल चतर

0: श्रम करते दम आद को ते गणित निता कवन वडाई कह सको बेअंत गुणिता कर कृपा मोहे नाम देहो नानक दार सरिता कवन वडाई कह सको बेअंत गुणिता कर कृपा मोहे नाम देहो नानक दार सरिता वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
1: वाहेगुरु जी जिता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास